0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: संगीत संगीत
3: संगीत रूदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
3: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
3: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब।
3: कल्चर ऑफ पंजाब
4: फूलों से भरा हुआ गार्डन टहलने के लिए और अंदर भरा हो अनगिनत सपनों और उमंगों के साथ, भला इससे ज्यादा कोई शख्स क्या मांग सकता है। कुछ फूल पांव में और बहुत सितारे आसमान पर। नमस्कार, आदाब सामीन, इसी दो और उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी हैं खुश हैं, मजे में हैं, मैं प्रीत चाहूंगी इजाजत आज के शो का आगाज करने की लेबा ब्रे की लिखी बात के साथ। अपनी किताब गोइंग बोवाइन में उन्होंने लिखा है कि हम सब एक अलग किस्म की इनसिक्योरिटी और डर के साथ हरदम घिरे रहते हैं। पता है क्या, जब सूरज उदय होकर एक अच्छा दिन सामने दिखता है तो हम डरते हैं कि ये ऐसा नहीं रहेगा सदा, और जब सूरज डूब रहा होता है तो हमें फिक्र होती है दैट इट माइट नॉट राइज अगेन इन द मॉर्निंग। जब हमें बहुत सा प्यार मिलता है तो हम इस खौफ में रहते हैं कि कहीं ये मोहब्बत गायब ही ना हो जाए, हमारे हाथ से निकल ही ना जाए, और जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं जो हमारी जिंदगी में प्यार शब्द लिखना ही भूल गई। हम बोलते हैं तो हमें डर होता है कि कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, पर जब हम चुप होते हैं तो हम जल रहे होते हैं उन लोगों से जो बोलकर अपनी बात कन्वे कर पा रहे होते हैं। इन शॉर्ट, हमने अपनी जिंदगी पर डर की एक चादर तानी हुई है जो हमें खुलकर जीने नहीं देती है, तो वैसे सच। ओके, टाइम टू मूव ऑन, बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट की ओर और बात करते हैं आज की तारीख की यानी 29 जुलाई की और हिस्ट्री में इस तारीख की इंपॉर्टेंस की। आज की तारीख को 1981 में वर्ल्ड ओवर टीवी पर देखी गई प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना स्पेंसर की शादी एट सेंट पॉल्स कैथेड्रल लंदन। करीबन 700 मिलियन लोगों ने दुनिया भर में ये शादी को देखा। 29th जुलाई 1987 को प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट जेआर जयवर्धने ने साइन किया था द इंडो श्रीलंका एकॉर्ड ऑन एथनिक इश्यूज। इसके अलावा आज बर्थ एनिवर्सरी है कनेडियन पॉलिटिशियन की जो पायनियर रहे इन द कनेडियन सोशल डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी जेएस वुड्सवर्थ की। जेम्स वुड्सवर्थ पहले लीडर बने ऑफ द कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ फेडरेशन, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी जो बाद में बन गई एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। साथ ही साथ आज यानी 29 जुलाई को जन्मदिन है शिवराम फडणवीस का जो कि भारत के कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर हैं। मराठी मैगजीन मोहिनी का जो दिवाली स्पेशल इश्यू निकलता है ना 1952 से लेकर आज तक, उसे डिजाइन करते आ रहे हैं ये। ओके, बिसाइड्स ऑल दिस, आज इंडियन एक्टर प्रोड्यूसर और सिंगर संजय दत्त का भी जन्मदिन है। एक्ट्रेस सुनील दत्त और नरगिस दत्त के इकलौते बेटे संजय ने अपना फिल्मी डेब्यू किया था 1981 में फिल्म रॉकी के साथ। इंडियन मीडिया और उनके ऑडियंसेस संजय को डेडली दत्त के नाम से भी रेफर करते हैं ड्यू टू हिज लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेल्स ऑफ कैरेक्टर्स।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मैंने रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जर्नल पढ़ा जिसमें राइटर ने लिखा था कि मैं ऑफिशियली बड़ा होने से रिजाइन करता हूँ और वापस एक 8 साल के बच्चे वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। वो जिंदगी जब लाइफ बेहद सिंपल थी, फुल ऑफ कलर्स, लॉट्स ऑफ फन, व्हेन लाइफ टर्न्ड इट लुक्ड लाइक अ फेयर और हर इंसान अच्छा और ऑनेस्ट लगता था। कोई डिप्रेसिंग न्यूज, बीमारी, गॉसिप नहीं थी, तो बस प्योरिटी, स्माइल्स एंड ड्रीम्स। याद आ गए ना वो सारे पुराने दिन, क्योंकि आज भी उम्र चाहे हमारी बढ़ गई है लेकिन दिल में एक बच्चा तो अभी भी कहीं छिपकर बैठा है।

0: ਹੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ।
1: किसी ने राइटर एर्मा से पूछा कि अगर उन्हें लाइफ फिर से मिली तो वो कैसे जीना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि अगर सच में ऐसा हुआ तो वो बात कम करेंगी, सुनेंगी ज्यादा, किसी भी चीज के टूटने पर चिल्लाएंगी नहीं सब पर, और अपनी जिंदगी में सॉरी, थैंक यू एंड लव यू इन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहेंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक मिनट, हर एक लम्हे को फील करके जीना चाहेंगी। वेल, आई एम श्योर कि अगर आप भी अर्मा की बातों के साथ इत्तेफाक रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस आज से ही लानी शुरू कर देंगे बिफोर इट गेट्स टू लेट।

0: ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: अक्सर हम लोग एक भ्रम, एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, जो सच्चाई और रियलिटी से बहुत अलग है। माय वर्ल्ड, माय हैप्पीनेस, माय लाइफ, इनफैक्ट माय, मैं, मेरा, यहीं तक सीमित है हमारी दुनिया। पर जरा सोचें कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। डूबती हुई कश्ती को पहुंचा दो किनारे पर, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा।

0: ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: जब हम लोग अपने पर टाइम स्पेंड करने की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ वो टाइम इंक्लूड करना चाहते हैं जो हम अपनी हॉबीज पर स्पेंड करते हैं, साथ ही साथ कुछ वक्त बिताएं सच में अपने सेल्फ एनालिसिस पर भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद को अपनी वीकनेसेस का पता ही नहीं होता, और अगर ऐसा है तो सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि जिंदगी भर बस यूं ही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे।

0: मेरे कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज
1: स्मार्टली जीना है तो जिंदगी में कोई मकसद या एम जरूर होना चाहिए और जो लोग अपनी जिंदगी का मकसद नहीं जानते हैं, जिंदगी उनके लिए सिर्फ एक कुआं है जहां आज नहीं तो कल वो गिरेंगे ही गिरेंगे। और सिर्फ एम नहीं, उस एम को अचीव करने के लिए चाहिए ढेर सारा पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत सी पॉजिटिव सोच, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस बात से सहमत होंगे कि मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे पुख्ता इरादे। मेरी किस्मत नहीं मोहताज, मेरे हाथ की लकीरों की।

सतगुर नाम बुझाया विना मैं भुख ना जाई नामे तृष्णा जगन बुझै नाम मिलै तसैर जाई रहाओ। कल कीरतो शब्द पछाण एहा भगत चुकै अमान सतगुर सेवै होवै परवान जिन आसा कीती तिसनो जान तिस क्या दीजै जे शब्द सुनाए कर कृपा नाम मन वसाए एहो सिर दीजै आप गवाए हुक्मै बूझै सदा सुख पाए आप करे तै आप कराए आपे गुरमुख नाम वसाए आप भुलावै आप मार्ग पाए सच्चै शब्द सच समाए सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख जुग जुग आख बखाणी मनमुख मोहे परम भुलाणी बिना मैं सफर बौराणी तीन भवन मैं एका माया मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा पाओ दृढ़ाया बहुकर्म कमावे दुख सबाया सतगुर सेव सदा सुख पाया अमृत मीठा शब्द विचार अंधन भोगे हो मैं मार सहजानंद कृपा धार नाम रते सदा सच प्यार हर जप पढ़िया गुर शब्द विचार हर जप पढ़िया हो मैं मार हर जपिया पै सच प्यार नानक नाम गुरमत और तार एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला तीजा अष्टपदियां घर अठवां काफी गुरते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई गुरते नाम पाई है वड्डी वड्याई एको